0: ब्रो?
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदे,
0: राम्रोसँग ल गाइदे, म चाहिँ

0: पटक बैंक अफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटीजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटीजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री
1: के छ हो धनुष भाई भाले बोकेर कता
2: भाकल
1: के को भाकल हो
2: सुन्तली का चिउमा दाग आएर हात खुट्टा पनि झम झम गर्छ भन्छे जान्नेलाई देखाको देउताको श्राप लागेर यस्तो भाको रे त्यसैले भाले चढाउन
1: यस्तो पनि हुन्छ
2: म पाटियार घर हिँड्न न ल हेर्ने साई
1: यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ शरीरमा यस्तो रातो चुचो दाग देखिनु अनुहारको छाला तथा कानको लुटी बाक्लो हुनु शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्नु दागमा छुँदा थाहा नपाउनु मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन् तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्
2: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त
1: यो देउताको होइन किटाणुको करामत हो
3: भाकल छाकल छोडौँ धुर्मु उहाँले भने जस्तै जता र औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ कि
4: कुष्ठरोगको समयमै उपचार गरौ अङ्गभङ्ग हुनबाट बचौं बचाऊ
5: जनहितका लागि जारी सन्देश नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग
6: नरेश भैया आपके फोन आवे के बाद हम दौड़ के चली आए भौजी कहाँ हिन
7: वही खटिया पर सूती इन बहिनी वहारे चला जाए ना
6: भौजी आपका कहाँ डसी ली घर के आसपास साफ सुघर रखा गया है तब वो आपका सपोर्ट डसी ली
8: हाँ बहनी यही एरिया से ऊपर दसिस है आपके भैया एम्बुलेंस का खबर तो कहीं है पता नहीं कब आई
6: ना घबरावा जाए भौजी हमरे साथ में हन आपका कुछ नहीं हुई बल्कि गोर ना चलावा जाए और नरेश भैया एम्बुलेंस आवे के समय लाग सकत है नक्सरवे की केहू के मोटरसाइकिल है तो वही पर लेके भौजी का सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के तैयारी करा जाए
7: यही समय पर खाए वाला चीज नहीं देख चाहिए स्वयं सेविका बहनी
6: जी हाँ चिकित्सक जब तक न कहे तब तक बीमारिया का कुछ खाए के नहीं दे के चाहिए
9: सांप डस लिए के बाद सहज वातावरण बनावे और सांप डस लिए अंग का स्थिर बनावे के प्रयास करे के चाहिए फट्टी बांध के सांप डस लिए जगह का ढेर हिले से रोक सका जाता है कसा कपड़ा गहना जेवर घड़ी पेटी अंगूठी आदि खोल दिए या ढील कर दिया जाए बीमरिया अकताए गए पर और समस्या हुए के नाते बीमरिया का शांत रह के सहयोग करे के चाहिए कितना पे लोग सांप डस लिए जगह से ऊपर रसरी से कस के बांध के काम करत हैं ऐसन करत के रक्त संचार में समस्या हो सकत है जौने से सांप डस लिया शरीर के भाग काट के फेंके के अवस्था समेत आ सकत है
10: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देख सका जात है
11: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
12: मेरो त घर बनाउने धोको पनि अरूको देख्दा देख्दै सकियो त्यो हरिदाईको घर हेर्दा राम्रो भएर के गर्नु धाराका पाइपहरू सबै फुटेर नुहाउने बाथरूम किचन टोयलेट गइसक्नु छैन मलाई त झन् केही थाहा छैन कस्ता पाइप धारा ठिक हुन्छन् फेरि त्यति मात्र भएर पनि भएन छड सिमेन्ट पनि चाहियो साह्रै तनावको काम रहेछ
13: हजुर यस क्षेत्रकै विभिन्न क्वालिटी युक्त हार्डवेयर सामानका लागि ग्रिसमा सप्लायर सबैको रोजाइमा रहेको पञ्चकन्याका सिटिडिसी पाइप फिटिङका सामानहरू धाराका आइटम अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका छड सिमेन्ट पानी ट्याङ्की कम्बट सिटहरू मार्बल सोमानी कम्पनीका टायल होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ
12: हजुरलाई समय पनि कम लाग्ने हरेक सामानहरू फिट गर्न सजिलो हुने पाइपहरूमा खिया लाग्ने र चुहिने समस्याको समाधान
14: सुन्नुहोस् त हामी कहाँ टाइल ग्रेनाइट ड्रेन गाडो बाथ फिटिङ सेनेटरी र मोडुलर किचन सेट सम्म उपलब्ध छ है
13: सम्पर्क ग्रिसमा सप्लाइज बारगंगा बैरिया कपिल वस्तु फोन 076550317 मोबाइल 98571713 संचालक गिरिराज कहे
15: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
16: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाडजोर्नी नस तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
15: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाडजोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यापिएको, भाँचिएको, हाडजोर्नीका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
16: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल, श्रवण पथ बुटवल, साझा हस्पिटलको अगाडि।
15: सम्पर्क नम्बर 071534905, 071553905 र मोबाइल 98570178010।
17: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री एफई 550D ले एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ। नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछन्। सब एकदम खुसी हुन्छन्। तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठूलो भूकम्प आउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
18: नमस्कार, आप इतना घड़ी सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज के संगरी रहल जाइत बा। इस समय हो थारू गीत संगीत के। आप इस समय में थारू गीत संगीत सुन सकल जाई।

0: शांति का विकास को आधार सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ट्ज़।
1: यति बेला दिउँसोको 1 बज्यो।
2: क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार विराटनगरमै, सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार, शल्यक्रिया, रेडिएसन सहित न्युक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छ। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत दुई तर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो खोज्नु पर्दैन। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर 1 क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 97160025 30।
3: कता हो काका लहर लहर गर्दै?
4: कहाँ हुन्थ्यो बाबु, यो छोराले विदेशबाट पठाइदिएको एलइडी टिभी पनि बिग्रियो, इन्भर्टर पनि त्यस्तै छ, छोराले अमेरिकाबाट पठाइदिएको यो आइफोन के गर्दा भइमा खस्यो यो पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर म त आज बिहानै उठेर हेर बाबु, यो 4 नम्बर जितपुरमा रहेको शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर एन्ड मोबाइल मर्मत सेन्टरमा गएर बनाएर लिएर साँझ चडक्क बुढाबुढी बसेर टिभी हेरौँला नातिले मोबाइलबाट फोन गर्ला बाबुला भनेर बिहान बिहानै दौडेको छु।
3: मेरा पनि घरका सबै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिग्रेर कामै नलाग्ने भएका छन्, कहाँ लाँदा ठिक हुन्छ होला?
4: ल होइन, सँगै जाम शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुरतिर।
3: हजुर, हाम्रा सेवाहरू,
4: हामी कहाँ सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिनुको साथै आइफोन, एन्ड्रोइड फोन, मोबाइल फोनहरू दक्ष प्राविधिकद्वारा चिप लेभल मर्मत सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउँछौ, साथै नयाँ मोबाइल पनि पाइन्छ। अन्य विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुर कपिल वस्तु प्रोप्राइटर सञ्जय श्रेष्ठ एन्ड विजय श्रेष्ठ 98-46-19-125 र 98-75-52-004।
5: हाँ हाँ, आई गेन 7-10 लिए बिमरिया का धीरे धीरे लाई मिलत तो बढ़िया रहा।
6: अच्छा अच्छा, एक छिन हमरे सहयोग कई के लावा जाते बल्कि मोटरसाइकिल घुमाई के इधर करा जाए।
5: होत है। अच्छा, बीमारिया का धीरे धीरे हमरे पीछे बैठावत जाए और एक जने बीमारिया का पकड़ के बैठा जाए, उपचार केंद्र तक पहुँचावत के बीमारिया बेहोश हो सके के नाते पीछे से बैठे वाले व्यक्ति का पकड़े रह के चाहिए।
7: बीमार व्यक्ति का सुरक्षित हो के मेर पकड़ के बैठवे। सुनील जी, आप जैसन मोटरसाइकिल स्वयं सेवक के कारण सर्प दंश के बीमार व्यक्ति का उपचार केंद्र ले जाए के सहज भावा है।
5: एम्बुलेंस और 4 चक्का वाला सवारी की तुलना में मोटरसाइकिल सब जगह पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। कितना जगह पर तो हमरे जैसन मोटरसाइकिल स्वयंसेवक लोग हैं। आसानी से और जल्दी उपलब्ध हो पाए वाला बीमारिया का 4 चक्का वाले सवारी साधन में सहज हो के मेर से सुताई के नक्चेरे के एंटीवेनम भवा उपचार केंद्र में ले जाए के चाहिए।
6: अच्छा अच्छा, आप लोग जावा जाए, हम पल्ला बंद करके आई थे।
5: इनका डस लिए साहब के फोटो खींच लिया गया है तो वो लेके आवा जाए, साहब के पहचान हो जाए और उपचार करत के आसान हो।
7: फोटो हमरे मोबाइल में है, अब हमरे चला जाए, नहीं तो देर हो जाए।
8: सांप डस लिए पर उपचार के खातिर मोटरसाइकिल चालक या मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग लिया जाए, बीमारिया का अपने और मोटरसाइकिल चालक के बीच में सुरक्षित हुए के मेर से रखा जाए और नक्चरवे के एंटी वेनम उपलब्ध हुए वाले सर्पदंश उपचार केंद्र में ले जावा जाए। सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल चालक का बुलावा जाए, नक्चरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुंचावा जाए, जीवन रक्षा करा जाए।
9: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जाता है।
10: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउन का साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
11: सुन्नु न,
12: भन न,
11: चाडबाडहरू पनि नजिकै छ, बिहा पार्टीमा जाँदा पनि राम्रा गरगना छैनन्, बनाउन पर्ने।
12: बनाउला नि त फेरि सुन चाँदी जस्ता कुरा विश्वासिलो पसल पनि हेर्नु पर्यो नि
13: त्यसको लागि हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन नि हजुर हाम्रै सुन्दर नगरी चार नम्बरमा शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटे सुन चाँदी पसल खुलेको छ नि
12: त्यसो भए त जाम न त हामीसँग भएको पुरानो सुन पनि छ त्यो सुन पनि लगेर जाउँ है त्यही सुनसँग केही थप थाप गरी नयाँ सुन चाँदीका गर गहनाहरू बनाएर ल्याउला बरु त्यो सुन चाँदी पसल कहाँनिर छ कुन्नी
13: तौलिहावा रोड पश्चिम पट्टी एनसेल टावर भएको ठाउँमा
12: हजुर ग्राहकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै अर्डर अनुसार रेडीमेड गर गहनाहरू पनि तयार गरिनुको साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि सट्टीपट्टी गरिन्छ दक्षिण कालीगढबाट तपाईँले खोज जस्ता आकर्षक डिजाइनका गर गहनाहरूको लागि एक पटक अवश्य हामीलाई सम्झिनुहोस् शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटी सुनचाँदी पसल तौली हवा रोड पश्चिमपट्टि एनसेल टावर भएकै घरमा प्रोप्राइटर ओम गहतराज शुभचिन्तक लोक बहादुर विक नायरी मोबाइल 98215 90095 98575 56095 र 98174 52311
14: के छ हो धुनुस भाई भाले बोकेर कता
15: भाकल
14: के को भाकल हो
15: सुन्तलीका जिउमा दाग आएर हात खुट्टा पनि झमझम गर्छ भन्छ जान्नेलाई देखाएको देउताको श्राप लागेर यस्तो भएको रे त्यसैले भाले चढाउन
14: यस्तो पनि हुन्छ
15: नपाट्या घर हिँड्नु न ल हेर्नुहोस् त
14: यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ शरीरमा यस्तो रातो फुसो दाग देखिनु अनुहारको छाला तथा कानको लुटी बाक्लो हुनु शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्नु दागमा छुँदा थाहा नपाउनु मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन् तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नु
15: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त
14: यो देउताको होइन किटाणुको करामत हो
16: भाकल साकल छोडौँ धुर्मु उहाँले भने जस्तै जता र औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ के
17: कुष्ठरोगको समयमै उपचार गरौ अङ्गभङ्ग हुनबाट बचौ बचाउ
18: जनहितका लागि जारी सन्देश नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग
19: गुप्ता नर्सरी ड्राइभरको किसान तथा ग्राहक वर्गमा अनुरोध
20: समयको माग र चाहना अनुसार आफ्नो घर आँगन अफिस स्कुल संघ संस्थाका गार्डन सजाउन कसलाई मन लाग्दैन र
21: तर त्यसका लागि चाहिने थरी थरीका फुलहरू र डेकोरेसन बिरुवाहरू त चाहियो नि धन्दा नमान्नुहोस् तपाईँको घर आँगन गार्डनको आउटडोर इन्डोर डेकोरेसनका लागि प्राविधिक सरसल्लाह फुल बिरुवा लगायत आकर्षक तरिकाले डिजाइन पनि गरिदिन्छ गुप्ता नर्सरीले जहाँ तपाईँले खोजे जस्तै र रोजे जस्तै फुलहरू बिरुवाहरू पाउनका साथै माटाका गमला लगायत सेरामिक गमला र औजारहरू समेत पाइन्छ
19: बिरुवाहरू धमाधम बिक्री भइरहेको छ स्टक सीमित भएको हुँदा चाँडै सम्पर्क राखौ
21: गुप्ता नर्सरी ड्राइभर टोल रूपन्देही फोन नम्बर 071560205 सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक बिरुवाहरू चाहिएमा केही छुटको व्यवस्था पनि छ
22: नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाजको 89.6 मेगाहर्जको यो तरंगमा डाँडा पाखा घन्ज्याङ अनि चौतारीमा गुन्जिने ती लोक भाका अबको समय हो कार्यक्रम लोक भाकाको अब सुन्न सक्नुहुनेछ विभिन्न नयाँ लोकगीतहरू

0: स्टक बैंक ऑफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटीजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटीजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री
1: के छ हो दुर्नुस भाई भाले बोकेर कता
2: भाकल
1: के को भाकल हो
2: सुन्तलीका चिउमा दाग आएर हाथ खुट्टा पनि झन्झम गर्छ भन्छ जान्नेलाई देखाएको देउताकै श्राप लागेर यस्तो भाकल रे त्यसैले भाले चलाउन
1: यस्तो पनि हुन्छ
2: नपाट्यार भएर हिँड्नु न ल हेर्नुहोस् ताई
1: यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ शरीरमा यस्तो रातो फुसो दाग देखिनु अनुहारको छाला तथा कानको लुटी बाक्लो हुनु शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्नु दागमा छुँदा थाहा नपाउनु मांस पेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन् तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्
2: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त
1: यो देउताको होइन किटाणुको करामत हो
3: भाकल थाकल छोडौँ झुर्मु उहाँले भने आफै जताएर औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ कि
4: कुष्ठरोगको समयमै उपचार गरौँ अङ्गभङ्ग हुनबाट बचौँ बचाऊ
5: जनहितका लागि जारी सन्देश नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग
6: न डेराओ बाबु न डेराओ साँप का कुछ न करे तक साँप कुछ नहीं करत है अच्छा वो देखो वो आपन रास्ता चली गवा कुछ की हिस्सो और सब सांप विशालू नहीं होत है ना
7: विशालू है कि नहीं कैसा चिन्ह है अम्मा
6: हाँ बाबू नेपाल में मिले वाले विशालू सांप के बारे में सुनो एक ठो होत है करेंट जोन प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है एकरे दस एक बाद ना ही पिरा सकत है लेकिन दस एक बाद शरीर के भाग न चलेक मेर से सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है और ऐसे होते हैं गोहुवन अर्थात फेटारा जौन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत है गोहुवन सांप दिन या रात दोनों ओकत दिखाते हैं और प्राय सवेरे संझा के दिखाए वाले एकरे दशक बादो पक्षघात हो सकत है
7: अच्छा
6: और दूसर होते हैं हरियो जात के सांप एकरे दशक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुत पिरात है खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है और वही मेर से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होत है एकरी दसाई के बीमारियां कमई मात्रा में मिलत है लेकिन एकर दसाई एकदम खतरनाक होत है
8: बरसायाम और बाली काटे समय में सांप के कटाई अथवा दसाई के घटना सब बहुत होत है बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होत के सांप दसाई के घटना सब अधिक होत मिलत है
9: ढेर जैसे सांप के दसाई हानिकारक नहीं होते है तब वो सांप दसिन लीज तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए चाहिए
8: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहके पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है
10: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
11: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना
12: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाडजोर्नी नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ
11: ब्लड प्रेसर सुगर थाइराइड मुटु रोग छाती रोग ग्यास्ट्रिक अल्सर निमोनिया चक्कर लाग्ने लुतो दाज पुतले दुबे चाया डन्डीफोर पुरानो घाउ खटिरा यौन दुर्बलता सेतो पानी बग्ने यौनाङ्गका घाउ खटिरा कपालको रौँ झरिरहने हाडजोर्नीका समस्याहरू प्यारालाइसिस जोर्नीहरू दुख्ने नचल्ने नसा च्यापिएको

0: बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ट्ज सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

सततम् स्वांके शकुंभौ करो आक्षस्रग्मृगहस्तमं भुजगतम् मूर्धस्तचंद्रम सवत् पीयूषोन्नतनुं भजेश गिरिजम् मृत्युंजयम् त्र्यंबकम् जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च।